दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से स्याह, तो जिन लोगों के मुंह स्याह होंगे उनसे खुदा फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे, सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो।

0: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: Imagine a child growing up without the love and protection of their parents. Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: 10 आ गया है। This girl can का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।
2: दिस इज इंस्पायर ऑन 105.1 FM।
3: I have

0: पैदा करने का हुगर है, जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा, वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। बुराइयां करने का हुगर है,
1: असल अल्फाज हैं हुमजतिल लुमजा, अरबी जबान में हम्ज और लम्ज मानी के एतबार से बाहम इतने करीब हैं कि कभी दोनों हम मानी इस्तेमाल होते हैं और कभी दोनों में फर्क होता है, मगर ऐसा फर्क कि खुद अहल जबान में से कुछ लोग हम्ज का जो मफहूम बयान करते हैं, कुछ दूसरे लोग वही मफहूम लम्ज का बयान करते हैं, और इसके बरक्स कुछ लोग लम्ज के जो मानी बयान करते हैं वो दूसरे लोगों के नजदीक हम्ज के मानी हैं। यहां क्योंकि दोनों लफ्ज एक साथ आए हैं और हुमजतिल लुमजा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए दोनों मिलकर ये मानी देते हैं कि उस शख्स की आदत ही ये बन गई है कि वो दूसरों की तहकीर और तजलील करता है, किसी को देखकर उंगलियां उठाता है और आंखों से इशारे करता है, किसी के नसब पर तान करता है, किसी की जात में कीड़े निकालता है, किसी पर मुंह दर मुंह चोटें करता है, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां करता है, कहीं चुगलियां खाकर और लगाई बुझाई करके दोस्तों को लड़वाता और कहीं भाइयों में फूट डलवाता है, लोगों के बुरे बुरे नाम रखता है, उन पर चोटें करता है और उनको ऐब लगाता है।
0: गिन गिन कर रखा,
1: पहले फिक्रे के बाद ये दूसरा फिक्रा खुद बखुद ये मानी देता है कि लोगों की ये तहकीर और तजलील वो अपनी मालदारी के गुरूर में करता है, माल जमा करने के लिए जमा मालन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिनसे माल की कसरत का मफहूम निकलता है, फिर गिन गिन कर रखने के अल्फाज से उस शख्स के बुखल और जरपरस्ती की तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है,
0: हमेशा उसके पास रहेगा।
1: दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि वो समझता है उसका माल उसे हयात जाविदा बख्श देगा, यानी दौलत जमा करने और उसे गिन गिन कर रखने में वो ऐसा मुनहमिक है कि उसे अपनी मौत याद नहीं रही है और उसे कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि एक वक्त उसको ये सब कुछ छोड़कर खाली हाथ दुनिया से रुख्सत हो जाना पड़ेगा।

اهدنا الصراط المستقيم. इसको समझने के लिए इसका मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा। इसको समझने के लिए एक मिसाल समझ लें। मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे गुलाम हो। मैं कहूँ चलो ठीक है, सही है। अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं गुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया, और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफे पे आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं कहूँ अच्छा गुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है? अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्जी, उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रिश्ता है ना, मालिक और रब। और अब्द रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो ये ना करो, ये इस वक्त करो ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया। मैंने मान तो लिया कि वो रब है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। ये भी होता है, मैंने ये चीज़ हाँ यूएस में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी। हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। तो मुझे फलाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया, या एक मैं बेना के साथ एक यूनिवर्सिटी थी, मुल्क का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारी यूनिवर्सिटी का बेना इंस्टीट्यूट के साथ बहुत तआवुन है। 10 साल पहले की बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, वो तआवुन है। यानी कहने को तो एक रिश्ता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है कि नहीं? नथिंग, कहने की बात है बस। और लेकिन वो जो हाथ शेक करते हुए फोटो लेना बहुत ज़रूरी है, वाह बड़े मज़े के हैंड शेक्स होते हैं यहाँ। आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं फिर ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता, हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है जिसको फ्रेम करना होता है। अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है, रब कहा है, तो रब होने का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे। अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ फिर वो? तो क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम अब बनने को तैयार हैं, इया का नाबुदो, हम आपकी मदद मांग रहे हैं, तो हमने पहली मदद क्या मांगी? देना, हमें हिदायत दें, हमें बताएं हम क्या करें। अच्छा अब तो हो गए लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है। और इस एहतिना में दो पहलू आ गए, दोनों इया का नाबुदू से भी मुतालिक है, इया का नस्ताइन से भी मुतालिक है। एहतिना यानी हमें हिदायत दें कि आपकी मदद कैसे आएगी दूसरे दर्जे में, और पहली बात हमें हिदायत दें हम इबादत कैसे करें, आपको खुश कैसे करें। पुराने मजाहिब में पता क्या होता था, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इस्लाम की, इस्लाम जब अंबिया लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं, खुदा को अगर खुश करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं खुश हो जाता। कोई ना कोई बकरी ज़बह करके उसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बना के उसके सामने रखना पड़ेगा। आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पे क्या होता है, आप वो खाना लेकर आते हैं और वो सामने पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दें। जब तक उस खुदा को कुछ दोगे नहीं वो आपको कुछ नहीं देगा। और ये तमाम मज़ाहिब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत नहीं सकते जब तक फलानी जो देवी है उसकी मदद नहीं आएगी, उस देवी को खून की एक कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है उसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो फिर उस देवी की मदद आएगी। अपनी बच्चियों को वो ज़बह करते थे उस खुदा की मदद लेने के लिए, क्यों? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना, वो था एक तिजारती रिश्ता।
ट्रांजैक्शनल, हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा। फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी अपनी नेमतें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है, उसने हम की मुस्तहिक चीज़ें की हैं खुद। फिर उसके बाद अर रहमान अर रहीम, हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है, वही कर रहा है। यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई, हमने कहा मेरे रब हम क्या करें, आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें, हमारे नाम क्या खिदमत है। और वो क्या है, एहदिना एहदिना, हमें कुछ तो कह दें। आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर दें, अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है ना? तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला हम से जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम अज़ कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक़ तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहतिना। और फिर एहतिना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहतिनी एहतिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहतिनी नहीं कहा, क्या कहा है, एहदिना। अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ दिल से, तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अपने बारे में। जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर रहमान अर रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरा मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अपने बारे में, इनफरादी बात है। मालिक योम दिन, मुझे आपकी फ़िक्र होती है, अपनी फ़िक्र होती है, अपनी फ़िक्र होती है। अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फ़र्द की थी, मेरी थी, तो यहाँ तक जो बात पहुँची तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी, मुझे हिदायत दें। अभी तो बात, हर बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूँ। लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है। इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि ये हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक ख़ुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, बाकी भाड़ में जाए बस मैं और तू। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फ़िक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। यह आखिरी जो जो तामुल है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। अगर इसका मफहूम आप वाकई समझे हैं, मुझे हिदायत दे नहीं कहा, हमें हिदायत दें कहा है, अगर इसको वाकई हम समझते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, मुझे औरों के लिए क्या चीज़ चाहिए, जो हिदायत मुझे अपने लिए चाहिए वही हिदायत मुझे उसके लिए चाहिए। और जिस नरमी से और जिस नरम दिल से मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ ना, उसी नरमी से मुझे किसी और के लिए भी हिदायत चाहिए। तो जब आप किसी को बड़ी नफ़रत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, जब आप ये लोग तो जहन्नमी है जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने उधर, जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो ये एहतिना की रूह से सही है कि नहीं? अगर वाकई एहतिना समझे हो और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है? उसके लिए दुआ की है, उसके लिए। और जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है, उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी हाँ चले उनको भी थोड़ी बहुत। एक दिन हम सबको इकट्ठे एक जैसे
जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं। हमारा आजकल क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे की अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट? हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायज़ा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूँगा, इसकी इस तरह धज्जियाँ उड़ाऊँगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है, अच्छा मैं गलत हूँ, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियाँ, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियाँ वीडियो रिलीज़ करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हयात का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूँ। और अगर बिना वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ है मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया है। मुझे फिक्र है क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कज़न की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पर चढ़ गया है, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कज़न की? मेरा कज़न जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, और मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है? ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते? उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे, कब शुरू हुआ ये, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हाँ आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज़ का तकाजा है? मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है। भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं। और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना, अगर कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूंगा, और लोग कमेंट में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें, हाँ मैं करूंगा बात उससे, वो बात करो, बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के करो। दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए। हम

اعبدوا. क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में कारण हमें ये पूरी किताब दी है। तो इसका मतलब यह होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा, और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, ज़कात शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, रोज़ा शामिल है, हज शामिल है, लेकिन इसकी तालीमात में तदब्बुर भी शामिल है, इसकी तालीमात में सोचना भी शामिल है, सीखना भी शामिल है, इसकी तालीमात में गौर करना, तारीख के बारे में सीखना, इसकी तालीमात में जज्बात को समझना, मुख्तलिफ जज्बात को समझना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुश्किल से गुज़रे उस पर गौर करना, यानी इबादत का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत वाज़े होती हैं जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह, लेकिन इस कुरान ने उस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा बना दिया। लोग आम तौर पे कहते हैं आपको कुरान हमेशा अमल में लाना चाहिए, एक एक आयत को आप अमल में लाएं। मेरा सवाल ये, आप अलिफ लाम मीम को अमल में कैसे लाएंगे? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह अमल में कैसे लाएंगे? अमल में लाने की वो आयात हैं जिनमें अमल का मुतालबा है, और आयात में तदब्बुर का मुतालबा है, सोचने का मुतालबा है, दिल के लरजने का मुतालबा है, मुख्तलिफ किस्म के मुतालबे हैं। हर मुतालबा अमल नहीं है, अमल तो एक पहलू है इबादत का, लेकिन इबादत के और बहुत सारे पहलू भी हैं, और क्योंकि बाकी मज़ाहब में उन सबको अलग अलग कर दिया गया, फ़लसफ़ी और हो गए और इबादत करने वाले और हो गए, और अहकाम पे ज़ोर करने वाले और हो गए, और जो है रूहानियत को समझने वाले और हो गए, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट खोल लिए। कुरान ने क्या किया, उन तमाम चीज़ों को हमेशा इकट्ठा रखा और एक को दूसरे से अलग नहीं होने दिया, और यही असल इबादत है, असल इबादत ये है। और ये कॉन्सेप्ट इबादत का कमज़ोर होता चला जाता है जब हम अल्लाह ताला के कलाम से दूर होते चले जाते हैं। जितना आप उस पर गौर करोगे आपका कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं होगा, जितना उससे दूर होते चले जाओगे इबादत के कॉन्सेप्ट में कमज़ोरी और कमी आती चली जाएगी, यहाँ तक कि इस मकाम तक पहुँच जाएंगे कि हम कहेंगे, किसी के बारे में कहेंगे इबादत कर रहा है इसका मतलब ये नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो कमाई कर रहा है अपनी फैमिली के लिए तो ये नहीं कहेंगे इबादत कर रहा है। राइट, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की तैयारी कर रहे थे वो इबादत कर रहे थे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि ये इबादत है। जो तिजारत कर रहा है और उसके ज़रिए से हलाल रोज़ी कमा रहा है वो भी क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है, वो इबादत कर रहा है। तो इसका एक जो जामे तसव्वुर है ना, उसको अपने सामने रखने की बहुत ज़रूरत है। खैर, तो ये एक बात थी। दूसरी बात थी मुजारे के बारे में कि इयाका नअबुदु में ये नहीं कहा इयाका अबदना व इयाका इस्तअन्ना, हमने आपकी इबादत की, हमने आपकी मदद मांगी, यानी माजी में कहा जा सकता था, लेकिन मुजारे इस्तेमाल किया है। मुजारे अरबी में मुदारे जो है ना, ये हाल और मुस्तकबिल दोनों को शामिल करता है। तो मैंने तर्जुमा एक तरह किया था लेकिन असल में तर्जुमा दोनों तरह है। हम आपकी इबादत कर रहे हैं और करेंगे, हम आपकी मदद मांग रहे हैं और मांगेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं मांगते रहेंगे, इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं, वो भी सही होगा, मांगते रहेंगे। तो हमने एक कमिटमेंट की है अभी की और फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, इन अल्फाज के ज़रिए से, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। ओके, दूसरा एक सवाल आया था अल आलमीन के बारे में पहले, कि अल आलमीन में तफसीर में अक्सर व बेशतर यही कहा जा रहा है कि अल आलमीन में नबातात, जमादात, परिंदे, जानवर, जिन्नात, तमाम आलम, तमाम दुनियाएँ, तमाम जहानों का मालिक ना, तो उसकी तरफ इशारा है। मैं उस बात का इनकार नहीं करता, मैं कहता हूँ कि क़ुरान के अल्फाज, जहाँ तक मैंने कुरान समझने की कोशिश की है ना, तो क़ुरान के अल्फाज में दो तरह के मफाहीम होते हैं। एक को कहा जाता है अल-अल-मआनी अल-अवाइल, और दूसरे अल-अल-मआनी अल-थवानी। इंग्लिश में समझने, प्राइमरी मीनिंग्स, सेकेंडरी मीनिंग्स, पहले दर्जे के मायने, दूसरे दर्जे के मायने, और ये कुरान में बहुत जगह होता है, और उनमें से किसी एक का इनकार करना गलत होता है।

0: मैं डॉक्टर फादिल सालिह हस्सा मराई के काम से बहुत मुतासर भी हूँ। उन्होंने कुरान की बलागत पे बहुत काम किया है, अरबी में ही काम किया है। इराकी हैं वो, सामर्रा से, अभी भी बगदाद में होते हैं। उन्होंने अलआलमीन की जो जो शरह की थी इसके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, उसकी बुनियाद पर मैंने ये बात आपके सामने रखी थी। और मेरे नज़दीक ये बात ना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के एतबार से सेंस रखती है, और इसको प्राइमरी रखना चाहिए इस सूरत में। जो अवाइल मायने हैं, इसमें इख्तिलाफ़ हो सकता है कि अवाइल मायने कौन से हैं, इनकार नहीं किया जा रहा एक का या दूसरे का, लेकिन पहले दर्जे के मायने किसके हैं, नंबर वन पे किसको रखना है, नंबर टू पे किसको रखना है। मेरे नज़दीक नंबर वन पे ज़वील उकूल, ईना से ज़वील उकूल निकलते हैं, यानी फरिश्ते, जिन, इंसान, रूहें, ये तमाम अलआलमीन में शामिल होंगी, इस दुनिया में या आखिरी में, अगली दुनिया में। लेकिन क्योंकि इस सूरत का असल मकसद इंसानियत से खिताब है, और इसका असल मकसद हिदायत है हमारे लिए, इसलिए पहली प्रेफरेंस मीनिंग की उस मानी को देनी चाहिए जो इसके साथ फिट करती है। तो सियाक से पता चलता है कि कौन से मायने को पहले दर्जे पे रखना चाहिए। ठीक है, खैर।
1: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Jis tarike se insaan mangta hai na, usse pata chal jata hai usko kiski kitni zarurat hai. Aapke bachche aapke paas aake kehte hain mujhe 500 chahiye, mujhe 1000 rupaye chahiye. Jis tarike se mang raha hai, mangne dene ka dil nahi chahta. फिर आप बच्चे को तमीज़ सिखाते हैं कि पूछा का तमीज़ से पूछा जाता है, अदब से पूछा जाता है, और फिर आप नमाज पे खड़े हो कहते हैं अल्लाह अकबर। उसको तो तमीज़ सिखा दी कि मुझसे कैसे पूछते हैं, और जिस तरीके से हम अल्लाह से पूछते हैं। एक दिन सुनाते हैं उस तफीम।

अब अगली बात हम करेंगे एहतिनामे हिदायत और इल्म का फर्क। देखें, अगर मैं आपको कहूं कि कोई आपसे पूछे ये आज का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, और कहे वो उधर वो एक सेंटर है वहां पर हो रहा है रवात में, और वो आपको यहां पहुंचने की हिदायत देते हैं, उसको भी हिदायत ही कहते हैं ना। आपने वो हिदायत लिख ली, लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने आपको यहां पहुंचने का इल्म दिया, मालूमात दी, वो भी बात ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में हिदायत और मालूमात एक ही बात है। आप मुझे हिदायत दें मैं कौन सा कोर्स लूँ, प्रोफेसर से पूछा जाके मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, और जब वो आपको वो हिदायत देगा वो मालूमात ही दे रहे हैं ना। तो बहुत सारी मिसालों में हिदायत और इल्म में कोई फ़र्क नहीं होता, एक ही बात होती है। किसी को हिदायत देना और किसी को इल्म देना एक ही बात होती है। लेकिन कुरान ने हिदायत और इल्म में एक तरफ तो एक ही बात, एक पहलू से एक ही बात है, और एक और पहलू से दो कम्प्लीटली पूरी तरह से मुख्तलिफ बातें, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जैसे बनू इसराइल के उलमा, उनके बारे में कुरान ने कहा है कि ये इल्म वाले लोग हैं, इल्म बहुत है उनके पास। क्या नहीं है? हिदायत नहीं है। अगर इल्म और हिदायत एक ही चीज है, तो अगर उनके पास इल्म बहुत है तो इसका मतलब है उनके पास क्या बहुत है? हिदायत बहुत है। इबलीस के पास बहुत इल्म है, बहुत इल्म है। उसके पास सारे अंबिया का इल्म, बल्कि उन अंबिया का भी इल्म जिनको हम नहीं जानते, उनकी कौमों को भी बर्बाद करने पहुंच गया था। उसको हम किस्सा आदम पढ़ते हैं, वो किस्सा आदम में खुद था, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बराह रास्त इल्म है उसको। हम मलाइका के बारे में सीखते हैं, वो अब मलाइका से उसकी मुलाकात हो चुकी है, उनके साथ में वो रह चुका है, यानी उसके इल्म में कोई कमी नहीं है। किस चीज़ में कमी है? हिदायत पर। तो एक पहलू से तो हिदायत और इल्म एक ही चीज़ है, एक और पहलू से हिदायत और इल्म दो अलग अलग मुख्तलिफ कम्प्लीटली अलग चीज़ें हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे इल्म मांगू, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, मालूमात मांगो, इल्म मांगो, एक दफ़ा आपने वो इल्म हासिल कर लिया तो वो आपका हो गया। आप इल्म को ओन कर सकते हो। आपने सीख लिया एक दफ़ा, दो और दो जमा चार इल्म है ना। अब आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आप उससे मज़ीद और इल्म सीखें और मज़ीद सीख लेंगे, उसके बाद मज़ीद और फिर मज़ीद और मज़ीद और, इसी को तालीम कहा जाता है। पहली जमात में जो सीखा उसकी बुनियाद पर दूसरी में मज़ीद सीखा, दूसरी में पहली वाली बात नहीं हो रही, दूसरी वाली बात हो रही है, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, पीएचडी तक पहुंच गए। जब पीएचडी में पहुंचे तो बैचलर्स वाली बात नहीं हो रही, आगे बात हो रही है।

इसीलिए वो हिदायत ऐसी चीज है, पहली तो आप उसको ऑन नहीं कर सकते, आप इल्म को किसी हद तक ऑन कर सकते हो, मेरा है ये इल्म, मुझे मुझे इल्म है इसका, आप जबान सीख तक सकते हो, आपने जबान सीख लिया, आप उसको ऑन करते हो, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी एक ओनरशिप है उसके ऊपर। लेकिन कुरान जिस चीज़ को हिदायत कह रहा है ना, वो इल्म से कहीं ज़्यादा है, कोई और ही चीज़ है जिसको आप कभी ऑन नहीं कर सकते, और क्योंकि आप उसको ऑन नहीं कर सकते और आपको उसकी ज़रूरत है, तो आपको वो बार बार मांगनी पड़ती है, और एक दफ़ा आपको दे दी जाए तो वो आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहती। इल्म की तरह, इल्म आपको एक दफ़ा दे दिया जाए ना, आपके पास ही रहता है, इल्म एक दफ़ा मिल जाए तो रहता है, अगर आपको खासकर आपको उसमें दिलचस्पी हो और आपने ठीक तरीके से सीख लिया हो तो वो आपके पास ही रहेगा, इल्म सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा वो इल्म। किसी ने एक दफ़ा ऑयल चेंज करना सीख लिया या घर का दरवाज़ा फिक्स करना सीख लिया, अब उसको पता है, उसको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास वो इल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत में जो हमसे मुतालबा करने को का सिखाया है ना, ए दिना हिदायत दीजिए, हम कितनी दफ़ा मांगते हैं, कम से कम दिन में अगर 5 वक्त का नमाजी है और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा है, सिर्फ फ़र्ज़ 17 मरतबा हिदायत का मुतालबा कर रहा है, और ये मुतालबा हम सिर्फ अल्लाह ताला से ही नहीं कर रहे बल्कि हम ये सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और ये सुन्नत है हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज, और वो हमसे कहीं ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, यानी हमसे कहीं ज़्यादा मरतबा अल्लाह के रसूल अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हिदायत। इंसानियत का हादी, इंसानियत को हिदायत देने वाला इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बेशुमार मरतबा हर रोज़ क्या मांग रहा है, हिदायत। इल्म तो है उनके पास, और मैं तो ये भी कहूँगा कि हिदायत भी उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी वो हिदायत क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इसकी मिसाल अब मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। कुरान ने कुरान की अपने कुरान को भी हिदायत ही कहा है, हुदा कहा है, और कुरान ने कुरान की मिसाल समझाने के लिए पानी की मिसाल दी है। कुरान का नाजिल होना बारिश के नाजिल होने से उसकी तशबीह की गई है कुरान के अंदर। पानी के बारे में सोचते हैं, प्यास लगती है, इंसान क्या करता है, पानी पीता है, एक दफ़ा पानी पी चुका तो ये नहीं कहता चलो पानी का तकाजा तो पूरा हो गया, अब किसी और चीज़ की तरफ ज़िंदगी, नहीं नहीं नहीं 2-3 घंटे बाद क्या होना है, फिर जिस्म खाली होना शुरू हो गया पानी से, दोबारा पानी, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी, फिर दोबारा पानी, आप अपने जिस्म को बरकरार नहीं रख सकते, ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बगैर पानी के, इसी तरह मेरी रूहानी ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती बार बार क्या चीज़ देने से, हिदायत, एहतिना एहतिना एहतिना एहतिना एहतिना। इल्म रहेगा, और पता है इल्म किसी के पास बहुत ज़्यादा भी हो जाए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास हिदायत है। मुझे जितनी हिदायत की ज़रूरत है उतनी आपको है, आप मुझसे, आप में से कई मुझसे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, आप में से कई कम हैं, लेकिन हिदायत का मुतालबा हम सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुरान हिफ्स कर लिया है, कुरान का हिफ्स करना इल्म है या हिदायत है, इल्म है। इल्म के ज़्यादा होने से हिदायत की गारंटी नहीं मिलती, हिदायत का रास्ता आसान होता है उसमें कोई शक नहीं, अब आपके पास वो मालूमात हैं जिनके ज़रिए से आप हिदायत ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास असल में हिदायत है, आपके पास मालूमात है, मालूमात है, हिदायत और चीज़ है, हिदायत मांगनी पड़ती है, हिदायत कभी आप ऑन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता अल्लाह का शुक्र है पिछले साल अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अब मेरी दुआ है कि बाकी फैमिली को भी हिदायत दे दे, क्योंकि मुझे तो देती अब मेरी जेब में है, इन बेचारों को भी मिल जाए तो इनका भी भला हो जाए, मेरे जहन में कभी आएगा नहीं कि मैं अब हिदायत के स्कूल से ग्रेजुएट हो सका, हो चुका, मेरी हिदायत की डिग्री है, बाकी बेचारे मिस्कीन अब इनको देने की ज़रूरत है, ये जहनीत आएगी नहीं मेरे दिमाग में कभी, क्योंकि हर नमाज में मैं इस बात को अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हिदायत की। अच्छा, नमाजें हमारी कम अज़ कम 5 हैं, कुछ कुछ घंटों के वक्फे से,

0: या वो एक्शन एकदम आदमी को आपकी जिंदगी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कम कम में बहुत है, थोड़ा बहुत हो जाता है, कम इंटरेक्शन रखें। देने वाले बन सकते हैं तो दें ज्यादा, लें लोगों से कम। लोग बहुत कुछ बाय द वे आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले वो आपसे क्या लेना चाहते हैं उनको पता ही नहीं, और जो वो लेना चाहते हैं वो आप एक हद से आगे दे ही नहीं सकते। ये सब जानने के बाद, इतने रिश्ते जिंदगी में बनाने के बाद, मेरे ऐसे ऐसे लोगों से रिश्ते हैं जो मुझे खुद बताते हैं, आपको पता है हम मरजाई हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो क्यों मुझे बताते रहते हो भाई, आपको पता है हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम फलां, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप उसी रब के बंदे हैं जिसका मैं हूं। आप अमल क्या करते हैं, आप मुंह से जो बोलते हैं उस पर रियलिटी में रह रहे हैं कि नहीं, आप जो मुझे कह रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं। मेरे साथ चलना एक मुश्किल काम है, आप चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कल कोई आपका प्यारा आ जाएगा वो आपको ले जाएगा, कल आपका मजहब आ जाएगा वो आपको ले जाएगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि तमाम मजाहिब एक मजहब के ऊपर खड़े हैं, वो है इंसानियत, और उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। और बाकी सारे रिश्ते भूल जाएंगे आपको, ये सब गायब हो जाते हैं। यही माँ बाप आपसे दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इनको आप पैसे ना भिजवाएं, इनकी मर्जी ना करें, फिर देखें। यही बच्चे एक वक्त के बाद, मैं कितने ही बच्चों को जानता हूँ, ना आपसे मिलना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी, और खुदा इसी दुनिया में आपको ये सब करके भी दिखा देगा, क्योंकि हम इस काम के लिए परमानेंट रहने के लिए आए नहीं, हज़ार साल के लिए थोड़ी आए हम। ये हमें लगता है हम इतने पैसे जमा करें जैसे हज़ार साल के लिए आए, हमें लगता है हम ये बचा लेंगे वो बचा लेंगे, आप कुछ भी नहीं बचा सकते। जब तक रब कहता है तुम दोनों जहानों के खजाने भी लुटा दो, तो दो इंसानों के बीच में मोहब्बत नहीं, दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, वो मैं करता। तो अगर वो है तो वो रहेगी, दुश्मन भी है तो रहेगी, वो इज्जत करेगा आपकी। नहीं है और आपने नहीं कमाई तो वो आपकी नहीं। दो चीज़ें, एक तो यह आपको कमानी पड़ती है चीज़, कोई भी चीज़ कमानी पड़ती है आपको, कुछ भी वैसे नहीं मिलता, कभी आप इंटेंशनली कमा लेते हैं, कभी अनइंटेंशनली भी आप कमा जाते हैं, और दूसरा वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है। दो चीज़ों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में कुछ भी और उठाने का, और वो जो गिफ्ट में मिला है उसके साथ एक टेस्ट है, वो वापस भी लिया जा सकता है, और जो मेहनत से कमाया है वो भी वापस जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपने कमाया है आपको पता है मैं दोबारा कमा लूंगा, दोबारा बना लूंगा। मैं बोर तो नहीं कर रहे हम आपको?
1: नहीं नहीं अज़ादला, बिल्कुल भी नहीं है। तो अज़ादला, क्या अनकंडीशनल लव फिर एग्जिस्ट करती है कि नहीं?
0: देखिए, अनकंडीशनल लव जो है ना, उसको एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है इंसान होने के नाते। कंडीशनल लव भी अगर हम लव भी कर लेना, हम कंडीशनल भी, देखिए माँ बच्चे को कितना ख्याल रखती है, जब वो जिस्म का हिस्सा होता है तब भी ख्याल रखती है, जब वो दुनिया में आता है उस वक्त भी ख्याल रखती है, उसका यही काम है। और बच्चा आगे से उसके साथ अगर कुछ उल्टा सीधा करेगा, बहुत कुछ, बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ भी करते हैं, बट कर जाती है वो बर्दाश्त, कोई बात नहीं, क्योंकि असल में लव है देने का नाम, लेना लूना कुछ नहीं होता। मोहब्बत आपके अंदर एक चीज़ है, जैसे आपके अंदर एक एनर्जी है तो है, जैसे आपके अंदर ऑनेस्टी है तो है, जैसे आपके अंदर अच्छाई है तो है। अगर है तो फिर आपको ये कहीं ना कहीं देनी है, दिखानी है, दिखेगी ये। जैसे बेवकूफ़ी नहीं छुप सकती ना, वैसे अकलमंदी भी नहीं छुप सकती, आप जो मर्जी कर लें। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं। आपका एक दोस्त है आपके साथ अच्छे हैं, वो अगर आपके साथ अच्छा है आगे से तो बुरी बात है ये, कंडीशंस में भी आ जाए कोई बात नहीं। इंसान की जितनी मोहब्बत है, क्योंकि इंसान जो है ना, रब अनकंडीशनल मोहब्बत कर सकता है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड विजडम है, अनलिमिटेड सब कुछ है। इंसान के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड विजडम है, लिमिटेड सब कुछ है। अगर उसमें वो ट्रांजैक्शनल भी चीज़ें करते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ दे लेके है तो कोई बात नहीं। माँ बेटे का रिश्ता भी देने लेने पे ही है, दोस्तों का भी देने लेने पे है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आप नहीं खा सकते, आपको शेयर करना है, सब कुछ आप नहीं जान सकते, आपको शेयर करना है। ये कंडीशन बहुत अच्छी चीज़ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। कंडीशंस के साथ ही पूरी कर लो भाई, समझ रही हैं? जो वाउज किए हैं वही पूरे कर लो, जो मुंह से बोला है वही पूरे कर लो, लोग वही पूरे नहीं कर रहे होते, वो मान ही नहीं रहे होते, ये तो बात ही नहीं थी। तो फिर शायर बेचारा कहता है जिसने चाहा है खुद को चाहा है, और खुद को कैसे चाहा है कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपकी कुछ से ही नहीं है। आप जब बात करते हैं, दुनिया में इतने बुरे हालात हैं दुनिया के, आप जब कोई बात करते हैं ना, मुझे पता कैसे पता चलता है एक आदमी होश में है कि नहीं, मैं जब उससे बात करता हूँ उसको मुझे दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा कहना पड़े मैं समझ कोई बात नहीं खैर है, लेकिन जब उसको मुझे 50-100 दफ़ा कहना पड़े तो उसका मतलब है यार

0: ये कौंड हो चुका है इसका, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। ये सुमन बुकमन होमयन वाली बात, ये बहरे हैं से शुरू होता है क्योंकि सुन नहीं रहे खुदा। किताब में भी सीक्वेंस में बताता है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये कभी वापस नहीं आएंगे। तो फिर आदमी कोशिश करता रहता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो अच्छी बात होती है उस बंदे में। आप जीरो तो नहीं कर सकते सारा कुछ ना, पार्टली भी अगर आपको कुछ अच्छाई मिल जाती है तो पार्टली को यूज करके आपने उससे होल बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि रब ने ये सब चीजें ऐसी रखी हैं, लोगों के अंदर चैलेंजेस रखे हैं। सबको अकल आ जाए तो आपको लगता है हम और आप बात कर रहे होते आज मतलब इसका वो मतलब नहीं जवाब है, इसका मतलब ये है, मेरा दोस्त था वो कहता था भाई तू तो ऐसे ही कलपता रहता है, अगर सबको ये सारी बातें समझ आ जाए तो तुझे कौन सुनेगा। तो उसको आगे मैं कहता हूँ मैं तो अकलमंद भी नहीं हूँ, तू कहता है खुद सोच, तू अकलमंद भी नहीं है तो तुझे सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। तो बाकी तो मैं इस जमाने में, और मैंने क्यों कहा तू बेवकूफों की बातें कर रहा है, इस जमाने में जिसके जितने लिसनर है, जिसमें जितनी कम अकल है उसके उतने ज्यादा लिसनर है, बिकॉज वो ज्यादा फैसिनेटिंग है।
1: आप पे तो बहुत अक्ल है माशाल्लाह,
0: बहुत अकल मेरे, ये अकल रोज करनी पड़ती है, ये अकल रोज कमानी पड़ती है, ये है नहीं। रोज सुबह आप उठते हैं, रोज सुबह जैसे आपको आज के दिन कमाना पड़ता है, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आप अगर रियाज करते हैं, ये किसी की मीरास नहीं है, समझ रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे अकलमंदों को ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते देखा, इसीलिए कहते हैं ना ये जो मोहब्बत का नशा है अकलमंद और बेवकूफों को एक साथ चढ़ता है। अकल किसी की मीरास नहीं है, किसी का हक नहीं है, ये चॉइसेस हैं। आप वो चॉइसेस करते रहेंगे लंबे अरसे के लिए, आप की अकलमंदी नजर दिखती जाएगी, आप वो गलत चॉइसेस करते जाएंगे आपकी बेवकूफ़ी दिखती जाएगी। इनको अगर ऐसे देखेंगे तो इंसान अपने आप से बाहर निकल आएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी ये बात सुन के या किसी और बंदे की बात सुन के मेरे दिमाग में किसी दिन ये बात आ जाए मैं अकलमंद हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ, कोई ऐसी बात कहता हूँ, कुछ करता हूँ, वो खुद बहुत काफूर हो जाता है कि नहीं भाई ये तो हर थाट के ऊपर एक अकल की थाट है एक बेवकूफ़ी की, मैं उठा कौन सी रहा हूँ, अकल के रिश्ते हैं बेवकूफ़ी के रिश्ते, मैं उठा कौन से रहा हूँ, रियलिटी किन चीज़ों के अंदर है, ये हर वक्त ये टेस्ट चलता रहता है। तो कभी आप अकल की चीज़ उठा लेंगे, कभी आप बेवकूफ़ी की चीज़ उठा लेंगे और करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आप हाउ इंक्लाइन, मिलान किस तरफ आपका ज़्यादा है। मिलान बड़ा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, है ना, कितना अच्छा सा लग रहा है मिलान, इसका मतलब है इंक्लिनेशन टूवर्ड समथिंग, नेचुरल इंक्लिनेशन टूवर्ड समथिंग, बड़े अरसे के बाद आया।
1: लेकिन आजादा एक इसी के साथ एक क्वेश्चन, जैसे आजकल जैसे मैं आपको अपना बताऊं, जब हम मुख्तलिफ बात लोगों की बातें सुनते हैं तो हर एक की बात को कहीं कहीं ना कहीं कुछ ठीक लग रहा होता है, तो आजादा बंदा ये कैसे डिसाइड करे कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे इसकी बात भी ठीक लग रही है, इसकी भी ठीक लग रही है, तो मैं खुद क्या हूँ, यानी ये डिसीजन आप कैसे ले।
0: नहीं देखें, इसकी बात अच्छी लग रही है, उसकी बात अच्छी लग रही है, इसकी बात ठीक लग रही है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेता है। अगर मैं बायस नहीं हूं और मैं आई एम रूटेड इन रियलिटी और मैं लॉज ऑफ नेचर के साथ चल रहा हूं और मैं प्रेजुडिस्ड भी नहीं हूं, तो मुझे हर बंदे का पर्सपेक्टिव लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद सोच लें, समझ लें। और एक बात, दो बातें याद रखिएगा, मशवरा अगर है तो किससे ले रहे हैं, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो उससे मशवरा नहीं बनता, एक बात, लेना नहीं बनता, ठीक। ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमें पता नहीं है कौन मशवरे के काबिल है और कौन नहीं है। और अगर कोई वैसे आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो अच्छी बात, तो हर समय में अच्छी बात, तो ये पता करना। और दूसरा, वो अगर क्वालिफाइड ही नहीं है कोई बंदा तो आप बेशक उसकी बात ना माने। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.

0: रास्ता दिखा, ऐसे रास्ते पे चला कि जिस पे चल के हम तुझे खुश कर दे। अब देखिए कि हमारे दीन में हमें क्या क्या बताया गया, कुरान में हमें किन किन चीजों के बारे में बताया गया। कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है, आप किसी को मालूम? सूरह बकरा की कौन सी आयत? आयत है दैन, कर्ज वाली। कर्ज पर आयत कुरान की सबसे बड़ी आयत है कि कर्ज का लेन देन कैसे करो। तो ये सिराते मुस्तकीम सिर्फ जन्नत दोजख की बात नहीं करता, बल्कि इसमें माश और माद दोनों के बारे में सब कुछ बताया गया। माश क्या होता है? दुनिया। और माद, वापस लौटना, आखिरत। ये दो लफ्ज अगर याद कर लें तो लंबी बातें छूट जाएंगी हमारी। माश माद, माश दुनिया के सारे मामले और माद आखिरत के। माश माद दोनों पर डिटेल्स मिलती है इक्वली। मसला जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि कुरान मजीद में सिर्फ हमें जन्नत दोजा की बातें नहीं मिलती, बल्कि क्या है, कर्ज पर भी हमें रहनुमाई मिलती है। और कर्ज पर जो आयत है वो सबसे लंबी आयत है कुरान मजीद की।
1: अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तरकना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा ताइरुन युकल्लिबु जनाहैहि फिल हवाई इल्ला वहु युज़क्किरुना मिन्हु इल्मा क़ाला फ़क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बक़िया शैउन युक़र्रिबु मिनल जन्नति वयुबाइदु मिनन नारी इल्ला वक़द बुय्यिना लकुम। हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हाल में छोड़ा, यानी दुनिया से जब आप रुख्सत हुए, कोई परिंदा ऐसा नहीं था कि जो हवा में अपने पर फड़फड़ाता हो, मगर ये कि आपने हमें उसके बारे में भी इल्म दिया, यानी उससे कोई ना कोई इबरत और नसीहत की बात हमें सिखाई। और वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो जन्नत से करीब करती हो और दोजख से दूर करती हो, मगर ये कि वो तुम्हारे लिए वाज़ेह ना कर दी गई। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को छोटी छोटी चीज़ों से, हत्ता के परिंदों से भी सबक सिखाया और नेकी के बहुत से काम बताए, जन्नत में ले जाने वाले और जहन्नम से दूर करने वाले तमाम के तमाम अशिया सहाबा कराम को बता दी गई थी।
0: कहाँ है वो इल्म? परिंदों के उड़ने का इल्म कहाँ है? कुरान में, सूरत मुल्क में रोज आप पढ़ते हैं। क्या अवलम यरो इल तैरी, परिंदों के उड़ने के बारे में भी कुरान में जिक्र है। ये इल्हामी किताब है और इसमें परिंदों के उड़ने की बातें भी लिखी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहद अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
8: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas, radiyallahu anhuma,